से भी कम के प्रेत राम भव समुद्र सुखद नाव एक राम परम शांति परम निदान दिव्य राम